से चिट्ठियां, सो दूसरा हिंदी सॉन्ग जो मेरे हिंदू वीर कदे कदे बाजार विच मिलते हैं या शॉपिंग सेंटर विच मिलते हैं, ये प्रोग्राम सुनते रहते हैं। उन्हां दा कहना सी कि कदे कदाई हिंदी गीत भी गाया करो, तो मैं खास तो हिंदी गीत नहीं जानता, कोशिश करांगा अपने हिंदू वीरों वास्ते, हिंदू वीरां ते भैणां भरावां वास्ते एक मैं गीत तैयार करके ले आया, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था।